0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 27 मई 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही समय हो चला है खबरों की ओर रुख करने का. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए होंगे. आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम.

करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर आज का कार्यक्रम सुना जाएगा। नमस्कार ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के हमें सुन रहे सभी श्रोताओं को SBS हिंदी का नमस्कार। मैं हूं भव्या पांडे और अगले एक घंटे तक आपका साथ निभाने वाले हैं खबरें, बातचीत, जानकारी और शानदार गाने। आज के शो में हम बात करेंगे टैक्स रिटर्न में डिडक्शंस और क्लेम्स की, जानेंगे मेलबर्न के में जो चर्चित हुक टर्न है वो आखिर क्या होता है, और बताएंगे न्यू साउथ वेल्स में शुरू हुए पहले माइग्रेंट वर्कर्स सेंटर के बारे में भी। लेकिन इन सभी खास चर्चाओं से पहले आपको आज का सवाल बता देती हूँ। आजकल मैं आपको गाने की एक बहुत ही बढ़िया सी धुन सुनाती हूँ और उसके बाद आप मुझे बताते हैं कि ये आखिर कौन सा गाना है। कुछ बीते दिनों में मैंने देखा है कि आप सभी को ये जो छोटा सा कॉन्टेस्ट है वो बहुत ही पसंद आता है, तो आज मैं आपके लिए नया गाना लेकर आ गई हूँ। सुनिए इसे ध्यान से और बताएं मुझे 04397997667 पर सही जवाब।

तो यदि आपने ये गाना पहचान लिया है तो सही जवाब भेज दें मुझे 04397997667 पर। तो टैक्स रिटर्न भरते समय आखिर किन खर्चों पर क्लेम किया जा सकता है, क्या वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंस वाकई डिडक्शन में आता है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम SBS हिंदी की नई श्रृंखला जो कि स्वाति शर्मा आप तक लेकर आई हैं, जिसे हम कहते हैं मनी मैटर्स के दूसरे अंश में यानी दूसरे एपिसोड में आप तक लेकर आएंगे। इसके अलावा आखिर हुक टर्न क्या होता है, इसे लेकर इतनी घबराहट आखिर ड्राइवर्स को क्यों होती है और इससे बचने का सही तरीका क्या है, इस पर बातचीत करेंगे एक खास ड्राइविंग एक्सपर्ट के साथ। इसके अलावा एक खास अंश भी होगा जिसमें हम बात करेंगे सॉरी डे के ऊपर। अब ये सॉरी डे क्या होता है और इसका एवोरिजिनल्स के साथ क्या संबंध है, ये भी आपको जल्द बताऊंगी। इसके अलावा भारत से समाचार तो होंगे ही, और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आज के कार्यक्रम के जितने भी संदेश और सुझाव हैं वो आप मुझ तक 04397997667 पर भेज सकते हैं। साथ ही एक खास गिव अवे कॉन्टेस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। प्रस्तुत है 27 मई 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। वेलफेयर पेमेंट्स पाने वाले लोगों के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक नई एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज सिस्टम लाने जा रही है। कार्यस्थल मंत्री अमांडा रिश्वर्थ आज नेशनल प्रेस क्लब में अपने संबोधन के दौरान इन बड़े बदलावों की घोषणा करेंगी। नई व्यवस्था के तहत जॉब सीकर्स को 3 अलग अलग स्तरों में सहायता दी जाएगी और वन साइज फिट्स ऑल नीति को खत्म किया जाएगा। ऐसे में सरकार का कहना है कि पिछले 30 सालों में एम्प्लॉयमेंट सर्विस सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है वेस्ट पैक की ओर से। वेस्ट पैक पर $26 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? दरअसल फेडरल कोर्ट ने पाया है कि बैंक ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे ग्राहकों की मदद के अनुरोधों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की थी। करीब 6 वर्षों में बैंक को 200 हार्डशिप रिक्वेस्ट्स मिली थीं, जिनमें होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और निजी लोन से जूझ रहे ग्राहक शामिल थे। ऐसे में ASIC की डेप्यूटी चेयरवुमन सारा कोर्ट ने कहा है कि ये फैसला सभी लेंडर्स के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि फाइनेंशियल हार्डशिप यानी आर्थिक तंगी झेल रहे ग्राहकों की सहायता बेहतर तरीके से की जानी चाहिए। आइए अब चलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबर की ओर। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स ने कहा है कि IS समूह से जुड़े ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं और बच्चों के एक समूह की जांच जारी रहेगी, जिन्हें हाल ही में सिडनी और मेलबर्न वापस लाया गया है। बताया जा रहा है कि ये ग्रुप सीरिया के अल रोस कैंप में मौजूद आखिरी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थे। वहीं नेशनल एंटी करप्शन कमीशन को ये जांच करने के लिए रेफरल मिला है कि विक्टोरिया क्रॉस रेसिपिएंट बेन रॉबर्ट स्मिथ की गिरफ्तारी की जानकारी मीडिया तक पहले कैसे पहुंची। ऑफिसर ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेटर और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने संयुक्त रूप से ये रेफरल भेजा है। आइए बढ़ते हैं स्वास्थ्य की ओर। न्यू साउथ वेल्स में फ्री नेजल स्प्रे फ्लू वैक्सीन की एलिजिबिलिटी बढ़ा दी गई है। अब 2 से 17 वर्ष के सभी बच्चे और किशोर कम्युनिटी फार्मेसीज और GPs के जरिए

0: लिए ये वैक्सीन लगवा सकेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री रियान पाक का कहना है कि रिकॉर्ड स्तर के फ्लू सीजन को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। वहीं बात करें खेल जगत की तो जॉश इंग्लिस पाकिस्तान के खिलाफ आगामी वन डे इंटरनेशनल सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे। मिच मार्श आईपीएल के दौरान पैर में लगी चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में बताया है कि मार्श का आगे का इलाज और निरीक्षण पर्थ में किया जाएगा। बात करें भारत की तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले हैं। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि ये दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का एक अवसर होगा। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने भी पुष्टि की है कि इस यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी के साथ आज का न्यूज फ्लैश यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। स्टोलन जनरेशंस पर ऐतिहासिक ब्रिजिंग थीम होम रिपोर्ट अब सामने आ ब्रिजिंग देम रिपोर्ट सामने आई है और इसको 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उसकी केवल 6% सिफारिशों को ही लागू किया है। इस साल 26 मई को नेशनल सॉरी डे पर समर्थकों ने सरकार से अपील की कि बचे हुए लोगों और उनके परिवारों को बेहतर सहयोग देने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाए। आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट जो कि आप तक लेकर आ रही हैं स्वाति शर्मा।
1: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा। 1997 में स्टोलन जेनरेशन पर ऐतिहासिक ब्रिंगिंग देम होम रिपोर्ट पेश की गई थी। लगभग 3 दशक बाद भी उसकी 83 सिफारिशों में से केवल 6% ही लागू की गई हैं। 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है ताकि 1910 से 1970 के बीच अपने परिवारों से जबरन अलग किए गए इंडिजिनस बच्चों को याद किया जा सके और सम्मान दिया जा सके। यबरू महिला शैनन डॉटसन हीलिंग फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
2: इट इज द वन डे ईच ईयर व्हेन दिस नेशन इज आस्क्ड अगेन टू फेस अ सिंपल डेवास्टेटिंग ट्रुथ That governments in this country took our babies and our children from their families, their communities, their culture and their country. That they did this over generations and that they did this on purpose. This is not history. The people who lived through these policies are our aunties, our uncles, our parents, our grandparents, our cousins. They are sitting beside you.
1: उनका कहना है कि इतने वर्षों बाद भी निष्क्रियता का कोई बहाना नहीं हो सकता।
2: 29 years ago, the Bring Them Home report carried those truths into Parliament. Survivors sat in front of strangers and did one of the hardest things a person can do. They reopened their deepest wounds, often for the first time, believing that by putting their pain on the public record, this country would change. The report that followed made 83 recommendations. It was not just a list, it was a roadmap for healing, for justice, for reparations, a set of concrete steps to say this is how we begin to make this right.
1: 2008 में उस समय के प्रधानमंत्री केविन रड ने स्टोलन जेनरेशन से औपचारिक माफी मांगी थी।
3: As Prime Minister of Australia, I am sorry. On behalf of the government of Australia, I am sorry. On behalf of the Parliament of Australia, I am sorry. And I offer you this apology without qualification.
1: लेकिन रिपोर्ट की 30वीं वर्षगांठ और केवल 5 सिफारिशों के लागू होने के बीच समर्थकों का कहना है कि केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। इस नेशनल सॉरी डे पर हीलिंग फाउंडेशन ने फेडरल सरकार को 2 साल की कार्य योजना सौंपी, जिसमें नेताओं से अपनी माफी पर अमल करने की अपील की गई है। शैनन डॉटसन का कहना है कि यह योजना सरकार के लिए पुनर्स्थापन और न्याय को आगे बढ़ाने का एक व्यावहारिक माध्यम है।
4: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our communities is a symptom of that trauma. And we really need to address this from a systematic and holistic approach, and that is what the research has shown, is that there hasn't been that approach.
1: विभिन्न राज्य और क्षेत्रीय योजनाओं के तहत स्टोलन जेनरेशन के बचे हुए लोगों को एक मुश्त $1,00,000

0: तक के वित्तीय भुगतान दिए गए हैं। हालांकि क्वींसलैंड अब भी ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र राज्य है जहां कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। इस नेशनल सॉरी डे पर फेडरल सरकार ने स्टोलन जनरेशन के बचे हुए लोगों के समर्थन के लिए अतिरिक्त $2.6 मिलियन की फंडिंग की घोषणा की है। लेकिन गुन्नाई गुंदित जमारा और जाब वुरुंग महिला तथा सेनेटर लिडिया थॉर्प का कहना है कि न्याय केवल फंडिंग तक सीमित नहीं है।
1: Sorry means you don't do it again. But what do you know, we have 24,000 Aboriginal and Torres Strait Islander children in out of home care in 2026. It is still happening. It is still real and babies are still being ripped out of their mothers' arms.
0: हीलिंग फाउंडेशन का कहना है कि स्टोलन जनरेशन के बचे हुए लोगों में ज्यादातर खराब स्वास्थ्य वाले बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाई लोग और कम आय वाले समूह हैं। डॉडसन का कहना है कि कई बचे हुए लोग अब वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, इसलिए सिफारिशों पर कार्रवाई अब समय की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।
2: Most survivors are now eligible for aged care, and we still need to see a better trauma-informed and culturally safe approach for survivors, particularly, for example, ensuring that they have fully subsidized co-payments so that they're not having to be out of pocket for costs to support them as they age with dignity at home.
0: Northern Territory ki Lingiari seat se federal sansad Marion Scrimgore hain. Unke pita ko bachpan mein Central Australia se zabran alag kar diya gaya tha. Unka kehna hai ki stolen generation ke sabhi logon ko atirikt sahyog milna chahiye taki vridh dekhbhal ki prakriya unke liye aur adhik aghat ka karan na bane.
3: It is also proposed that there be a Stolen Generations Access and Prioritisation Card and a formal escalation pathway for survivors, aged care complaints, delays and inquiries, and that Stolen Generation organisations be provided with additional dedicated funding over 4 years to assist our remaining survivors in navigating their respective aged care journeys.
0: शैनन डॉडसन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल तक वास्तविक प्रगति देखने को मिलेगी।
4: Sorry signals compassion, but action creates justice. My hope is that when we gather again next year for the 30th anniversary, we will not just be marking another date. We will be able to point to real changes. To every survivor and family here today, we see you, we hear you. We carry your stories with us. Actions speak louder than words. It's time to move from sorry to action.
0: SBS News से सिडनी लैंग की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी पर प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने। धन्यवाद।

0: advertising.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
7: दोस्तों ब्रेक के बाद SBS हिंदी के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो आपको बता दूं कि वक्त हो चला है 5:16 और वैसे तो बुधवार को मैं आऊं और आप मेरे साथ ना जुड़े हों ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप आज के कार्यक्रम में किसी भी कारणवश जरा देरी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि हमारा कोई भी सेगमेंट या कार्यक्रम आप SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर सुन सकते हैं। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, तो यदि आपने हमें अभी तक वहां पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, क्योंकि इन दो माध्यमों के माध्यम से हम आप तक जो खबरें हैं वो वीडियो के फॉर्मेट में एक अलग अंदाज में लेकर आते हैं। तो जल्दी से SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर जाएं और फॉलो कर लें। चलिए, ब्रेक से पहले हमने नजर डाली थी आज की खबरों पर और साथ ही स्टोलन जनरेशंस पर आधारित एक रिपोर्ट पर एक अंश हम आप तक लेकर आए थे जो कि उम्मीद करती हूं आपको पसंद आया होगा। साथ ही आप सभी लोगों के खूब सारे संदेश आ रहे हैं जो कि जल्द पढ़ूंगी और एक बार फिर से आज का जो मेरा सवाल है वो दोहरा दूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं भारत की खबरों पर।
8: क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक हुई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान वाले इस रणनीतिक समूह ने समुद्री सुरक्षा पर जोर दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नेविगेशन की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए नए उपायों की घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। समुद्री निगरानी को मजबूत करने के लिए IBMDA की शुरुआत की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय में अधिकारी नागराज नायडू ने इस बारे में जानकारी दी।
9: The ministers underscored the importance of maritime security and resilient sea lanes in the Indo-Pacific. The Quad has expanded its cooperation under the IPMDA, which is the Indo-Pacific Maritime Partnership for Maritime Domain Awareness, including efforts towards a comprehensive common operational picture across the Indo-Pacific. The Quad today launched the Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, the IPMSC. This is aimed to strengthen the coordination in maritime surveillance. IPMSC, with the integration of the latest technologies, will augment the IPMDA and enable sharing of real-time information and provide an enhanced picture of vessels. This effort will initially be focused on the Indian Ocean region.
8: इस निगरानी पहल को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताते हुए नागराज नायडू ने कहा कि इसे सैन्यकरण की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।
9: सर्वेलेंस शुड नॉट बी सीन एज मिलिटराइजेशन ऑफ द क्वाड, नाइदर इज IPMDA, द इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस। द आइडिया टुडे इज दैट द इंटरनेशनल वाटरवेज टुडे आर नाउ गेटिंग क्लॉग्ड। एट द सेम टाइम देयर आर अ लॉट ऑफ grey ships around, there are dark ships around. So countries, you know, in the Indo-Pacific sometimes do not have access to such technologies. So Quad partners have come together. Some of these technologies are very, very expensive. They are available commercially. So what Quad partners are doing together is to somehow buy this.
8: क्वाड बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के बीच एक बैठक हुई।

0: 17वें भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों के फ्रेमवर्क डायलॉग के तहत इस बैठक में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग पर आपस में बात की है। व्यापार समझौते को बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनी है। क्वाड बैठक के इतर भारत और अमेरिका के बीच भी द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक समझौता हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बारे में बताते हैं।
1: वी आर टुडे साइनिंग अ बायलैटरल इंडिया यूएस फ्रेमवर्क ऑन सिक्योरिंग ऑफ सप्लाई ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ्स। दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव आल्सो डिस्कस्ड टुडे एट द क्वाड मीटिंग whether we are doing it bilaterally, whether we are doing it as a quad format, or in fact as a larger gathering of like-minded nations, it is clearly something very timely, something very important, something very critical today.
0: इस अवसर पर अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर कहा।
2: Two countries who have a strategic interest in ensuring reliable long-term access to critical minerals and supply chains that are important for our innovation economy. And today is a tangible result of that. It's tangible evidence of why it is we are strategic allies.
0: सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड पर काम कर रही है। मंगलवार को राजस्थान के बीकानेर में बीएसएफ के एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में कहा।
3: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़ेगा और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ की सरकार का स्थानीय प्रशासन, इस प्रकार की एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड ही हमारे सुरक्षा, कंप्लीट सुरक्षा ग्रिड की कल्पना को पूरी कर सकती है।
0: 2014 के बाद भारत की सुरक्षा नीति में आए बदलाव को लेकर अमित शाह कहते हैं।
3: 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूर परिवर्तन आए हैं। सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: और अब चर्चा कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री को बदले जाने की चर्चा जोरों पर है। यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली आए थे। इसके बाद से ही माना जा रहा है कि सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को कमान सौंपी जा सकती है। वैसे कांग्रेस पार्टी ने इसे महज अटकल बताकर खारिज कर दिया है। बैठक के बारे में बताते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा,
4: टुडे एंटायर डिस्कशन इज ओनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कमिंग राज्यसभा इलेक्शंस एंड काउंसिल इलेक्शंस ऑफ कर्नाटक। व्हाट एवर स्पेकुलेशन यू पीपल आर डूइंग दैट इज ओनली स्पेकुलेशन, नो रियलिटी एट ऑल। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द राज्यसभा सीट्स एंड द काउंसिल सीट्स ऑफ कर्नाटक। The candidates of Rajya Sabha and Council seats of Karnataka will be announced along with the other seats like Chhattisgarh, like Madhya Pradesh and Rajasthan and Jharkhand, like the states.
0: और अंत में चर्चा एक और दक्षिणी राज्य केरल की। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर पर इस समय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। हाल ही में सत्ता गंवाने वाले विजयन वामपंथी राजनीति के बड़े चेहरे हैं। तिरुवनंतपुरम में विजयन के आवास सहित 12 जगहों पर छापेमारी की सूचना है। हालांकि इस छापेमारी को लेकर ईडी ने आधिकारिक रूप से अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है। भारत से आज की रिपोर्ट में

0: बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
1: तो दोस्तों, ये हमने सुने समाचार भारत से, और एक बार फिर से आज का सवाल दोहरा देती हूँ। तो अब मैं आपको एक धुन सुनाने वाली हूँ और आपको पहचानना है कि ये कौन सा गाना है। तो दोस्तों, नंबर है 04397997667। और चलिए, जो भी लोग हमारे साथ कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं, आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम में आपको एक धुन सुनाऊंगी और आपको इस गाने का नाम मुझे बताना है। एक बार फिर से आपके लिए चला देती हूं।

तो दोस्तों आप लोगों के संदेश मुझ तक आ रहे हैं और जल्द बताऊंगी कि किन किन लोगों ने आज के सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा संदेश पढ़ देती हूँ। हर्षवर्धन जी सिडनी से लिखते हैं, हेलो SBS, होप यू ऑल आर वेल, प्लेजर एज ऑलवेज लिसनिंग टू यू एंड ऑलवेज अमेज्ड बाय द ब्रॉडकास्ट। Huge thanks to you for your hard work and dedication for bringing the best to the community. साथ ही इन्होंने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही है, लेकिन क्या जवाब है ये नहीं बताऊंगी। और आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम को लेकर हमें फीडबैक देते हैं, अपना सुझाव या कोई भी टिप्पणी हम तक पहुंचाते हैं, तो हमें भी काम करने में बहुत प्रोत्साहित महसूस होता है।

दोस्तों एक और संदेश मुझे आया है, लिखते हैं अकबर मजारी और डैनियल मजारी जी, और आज के सवाल का सही जवाब उन्होंने देते हुए कहा है लव दिस सॉन्ग एंड लव दिस शो फ्रॉम सिडनी। तो आजकल सिडनी वासियों के खूब मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, क्या बात है। मेलबर्न वासी जो हैं वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो जल्दी से अपने फोन उठाएं और 04397997667 पर मुझे बताएं कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लग रहा है। साथ ही आप दोनों को भी आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार

तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप लोग सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं तो आजकल नई जनरेशन जेंजीज में ये नया ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी जो पुराने गाने पर आधारित रील होती है वो जब वायरल होती है तो लोग उस गाने को भी सुनकर उनमें और जिज्ञासा बढ़ जाती है कि ये कौन सा पुराना गाना है। तो मैंने भी ये गाना इंस्टाग्राम के माध्यम से एक रील में ही सुना था और तब से ये मेरा फेवरेट पुराना गाना है। और नए गाने कितने भी आ जाएं, शायद बिल्कुल सही कहा गया है, ओल्ड इज गोल्ड।

0: आपने ये गाना खूब इंजॉय किया होगा. और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और लौट कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. आप जुड़े रहें मेरे यानी भव्या पांडे के साथ SBS हिंदी पर.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. और इसी के साथ आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी. ईद मुबारक हमारे सभी श्रोताओं को. और आप लोग इस साल ईद कैसे मना रहे हैं, क्या कुछ खा

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: चलिए जल्दी से अपने जवाब जब तक आप मुझे भेज रहे हैं हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं और बात करते हैं मनी यानी पैसे को लेकर. तो हाल ही में SBS हिंदी ने अपनी एक नई सीरीज लॉन्च करी है जिसको हम कह रहे हैं मनी मैटर्स. तो सुनते हैं इस सीरीज का दूसरा एपिसोड जहां बात होगी टैक्स रिटर्न में होने वाली डिडक्शंस और क्लेम्स की. एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस सीरीज को स्वाति शर्मा आप तक लेकर आ रही हैं और इसका पहला एपिसोड जो है वो आप हमारी वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर फिर से सुन सकते हैं. फिलहाल सुनते हैं इस श्रृंखला का दूसरा एपिसोड.
3: आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स SBS हिंदी की नई श्रृंखला, अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में. नमस्कार, मैं हूं स्वाति शर्मा और आप सुन रहे हैं SBS हिंदी की सीरीज मनी मैटर्स. इस सीरीज के द्वारा हमारी कोशिश है कि हम उन सवालों के जवाब ढूंढ पाएं जो हर साल हमारी कम्युनिटी में अक्सर पूछे जाते हैं टैक्स सीजन के पहले. आज का टॉपिक है डिडक्शंस, यानी वो खर्चे जो आप अपने काम के लिए करते हैं और जिनकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है. आसान भाषा में कहें तो अगर आपने साल भर में $70,000 कमाए और आपके काम से जुड़े $2,000 के खर्च हुए हैं जैसे यूनिफॉर्म या फोन या फिर कोई कोर्स, तो ATO आप पर पूरे 70,000 पर नहीं बल्कि 68,000 पर टैक्स लगाएगा. मतलब हर क्लेम किया हुआ सही डिडक्शन आपकी जेब में पैसा वापस डालता है. पर इसमें एक कैच है, क्लेम करने के लिए तीन बातें जरूरी हैं. एक, वो खर्चा आपने खुद किया हो. दो, वो सीधे आपके काम से जुड़ा हो. और तीसरा, आपके पास उसका रिकॉर्ड हो, कोई रिसीट, इनवॉइस या फिर बैंक स्टेटमेंट. बहुत सारे लोग कभी कभार या तो ये जानते नहीं या रिकॉर्ड रखना भूल जाते हैं और हजारों डॉलर हर साल छूट जाते हैं. इसी पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पुनीत सिंह जो विक्टोरिया में एक रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं. पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी पर. आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से वो रोजमर्रा के काम खर्च यानी वर्क एक्सपेंसेस हैं जो लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्लेम कर सकते हैं.
4: बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी हमें इनवाइट करने के लिए. जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपको ये देखना है कि जब आप टैक्स रिटर्न कराते हो थ्रू आउट द ईयर आपको अपनी रिसिप्ट्स लॉग्स अपने पास रखने होते हैं. देर आर प्लेंटी ऑफ डिडक्शंस दैट यू कैन क्लेम. बट होता क्या है कि हम रिकॉर्ड कीपिंग नहीं रखते तो हम वो भूल जाते हैं. जब हम टैक्स अकाउंटेंट को अपना टैक्स रिटर्न अदा करने के लिए करते हैं या फिर हम खुद लॉन्च करते हैं तो हम भूल जाते हैं क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती. देखिए जी, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो आप सिंपली अपना टैक्स रिटर्न जब करते हो आप अपनी एक लॉग बुक मेंटेन कीजिए. आप वर्क फ्रॉम होम का जो 70 सेंट का मेथड है उसको यूटिलाइज कर सकते हो. उसके लिए आपको कोई रिसिप्ट की जरूरत नहीं होती. बट आपको एक प्रॉपर लॉग मेंटेन करना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके अलावा अगर आप मान लो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे, देर आर प्लेंटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस सच एज अगर आप कोई अपने स्टडीज को एनहांस कर रहे हो, अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हो तो आप एजुकेशन एक्सपेंस करते हो. फोन एंड इंटरनेट आपके पास होता है, यूनिफॉर्म होते हैं, प्रोटेक्टिव शूज होते हैं. सो बहुत सारी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप थ्रू आउट द ईयर अपने पास उनका रिकॉर्ड नहीं रखते और जब टैक्स रिटर्न लॉन्च करते हो तो वो भूल जाते हो. उसके कारण आपका काफी टैक्स रिटर्न जो है कम आने के चांसेस हो जाते हैं. सो आई वुड डेफिनेटली इनकरेज कि आप अपने प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग या रिसिप्ट अपने पास रखिए.
2: तो पिछले कई सालों से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ क्लेम किया जा सकता है और इसके लिए कौन कौन से रिकॉर्ड्स ATO को दिखाने पड़ते हैं?
4: जी, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट स्वाति जी. जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हो गवर्नमेंट ने दो मेथड्स अलाउ किए हुए हैं. अगर आप वर्क फ्रॉम होम का मेथड यूज करते हो, फिक्स रेट मेथड यूज करते हो, आपको 70 सेंट्स पर आवर के अकॉर्डिंगली आप क्लेम किया जा सकता है. आप अगर 1500 घंटे काम करते हो तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.70 आप क्लेम किया जा सकता है विदाउट एनी रिसिप्ट. बट एक प्रॉपर आपको लॉग बुक मेंटेन करनी होती है, दैट इज द रिक्वायरमेंट. ठीक है जी. दूसरी तरफ अगर आप लेट्स से वर्क फ्रॉम होम के अकॉर्डिंगली अगर आप फिक्स रेट मेथड नहीं यूज करते, आप एक्चुअल मेथड यूज करते हो, तो आपके जो यूटिलिटी बिल हैं, चाहे आपका जो एक्सपेंसेस आप रियल टाइम पे हो रहे हैं, वो आप फोन, इंटरनेट, स्टेशनरीज, वो आप एक्चुअल

0: रिसिप्ट आपको चाहिए, तभी आप एक्चुअल मेथड यूज कर सकते हो, बट फिक्स रेट मेथड में आपको लॉग बुक जरूरी है।
1: ऐसे कौन से डिडक्शंस हैं जो लोग क्लेम करने की कोशिश करते हैं पर एटीओ से रिजेक्ट हो जाते हैं, और गलत क्लेम करने का कोई कॉन्सिक्वेंस होता है?
0: जी बिल्कुल, डेफिनेटली। लास्ट ईयर आपने सुना भी होगा न्यूज में, पीपल ट्राइंग टू क्लेम पराडा बैग, गुची बैग, दैट इज इररेलेवेंट, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बड़े फैंसी हेडसेट्स लोग क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि हमें ये वर्क पर्पस के लिए चाहिए, नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडसेट चाहिए, तो दे ट्राई टू यू नो मेक दोज थिंग्स इन अ वे कि हम जस्टिफाई कर लेंगे, बट एटीओ ऐसा नहीं है। दे आर वेरी वेरी एक्टिव, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। जो चीज़ आप जेनरली क्लेम करना चाहते हो, जो आपके बिजनेस के लिए या आपके जॉब के लिए चाहिए, वो आप कर सकते हो, बट अगर आप बोलोगे कि मुझे यू नो लैपटॉप बैग, मेरे को फैंसी लैपटॉप बैग चाहिए या एलवी का लैपटॉप बैग चाहिए, आई डोंट थिंक सो यू कैन क्लेम दैट। So, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स जहां पर एटीओ ने वो डिडक्शंस डिनाई किए हैं।
1: जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वो डिडक्शंस जो आपकी जेब में पैसे वापस ला सकते हैं। अगले एपिसोड में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, साइड हसल्स और कैश जॉब्स, ऊबर, ट्यूटरिंग, केटरिंग, कैश में काम, इन सब के टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। SBS हिंदी पर इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद। SBS हिंदी की नई श्रृंखला
2: मनी मैटर्स,
1: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
3: इस अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है, SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
4: तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आई थी स्वाति शर्मा, और आपको बता दूं कि हर वेंसडे हम इस श्रृंखला का एक एपिसोड आप तक लेकर आएंगे, तो जरूर बताएं हमें कि ये प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है। फिलहाल एक बार फिर से आपको आज की धुन सुना देती हूं जो कि आपको गेस करनी है, और इस गाने का नाम मुझे बताना है। तो जल्दी से अपने फोन उठाएं और मुझे भेजें अपने संदेश। तब तक आपको एक और बढ़िया सा गाना सुनाती हूं जो कि मुझे लगता है हर रेडियो प्रस्तुति जो करता है उसके दिल के बहुत करीब है।

0: Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: तो दोस्तों ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका एक बार फिर से स्वागत है जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो मेलबर्न में अगर आप ड्राइव करते हैं तो एक ट्रैफिक रूल ऐसा है जो कई लोगों की धड़कन बढ़ा देता है, हुक टर्न। ये नियम नए ड्राइवरों के साथ साथ कई अनुभवी लोगों के लिए भी चुनौती बना होता है। तो आखिर इससे लोगों को इतनी घबराहट क्यों होती है, आइए जानते हैं इस अगली रिपोर्ट में।
2: हुक टर्न मेलबर्न की सड़कों का एक ऐसा यूनिक ड्राइविंग रूल जो शायद सुनने में आसान लगता है पर कई बार अनुभवी ड्राइवर्स को भी कंफ्यूज कर देता है। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील हसन। आज हम बात कर रहे हैं मेलबर्न के मशहूर हुक टर्न्स के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया के ट्रैफिक सिस्टम का एक यूनिक और जरूरी हिस्सा है। चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, हुक टर्न के वक्त थोड़ी सी नर्वसनेस तो आ ही जाती है। आखिर ये रूल बना क्यों, लोग इसे इतना चुनौतीपूर्ण क्यों मानते हैं और इसमें सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं? आइए इन सब पहलुओं को समझते हैं और बात करते हैं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट रौनक शाह से।
3: थैंक यू एंड नमस्कार।
2: रौनक जी, विक्टोरियन ड्राइवर्स की बात करें तो RACV के एक पोल के अनुसार 44% लोग हुक टर्न को सबसे मुश्किल मानते हैं, आपके हिसाब से ऐसा क्यों है?
3: हुक टर्न, व्हेन वी लुक एट द नेम, यू नो, अगर हम सोचते हैं कि हुक टर्न क्या है, राइट टर्न है, लेफ्ट टर्न है, वो दैट क्रिएट अ बिग इश्यू। तो जनरली हम लोग को ड्राइविंग टेस्ट में कि ड्राइविंग बुक्स में सिखाया है कि यू टर्न राइट फ्रॉम द राइट और यू टर्न लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये हुक टर्न ही ऐसा है कि आपको राइट करने में लेफ्ट से जाना पड़ता है, इसीलिए सब लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है और ये मेलबर्न में ही है। सो दिस इज लाइक द यूनिक प्रोडक्ट ऑफ द मेलबर्न। तो इसीलिए जो पीपल आर नॉट रेडी टू टर्न फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट टू द राइट साइड ऑन द ट्रैफिक लाइट, तो इसीलिए ये सबको बहुत इंटीमिडेटिंग लगता है। और स्पेशली जो लोग ट्रैवल करते हैं, अगर आप मेलबर्न में रहते हो और मेलबर्न में ड्राइविंग टेस्ट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको हुक टर्न दिखाया गया है, आपने हुक टर्न स्टडी किया है और कोई कोई बार ड्राइविंग टेस्ट में भी आता है, तो इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है।
2: जी अच्छा, जब नए ड्राइवर्स पहली बार हुक टर्न के बारे में सुनते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है?
3: आई मीन जैसे अगर सबको हम बोलते हैं तो हुक टर्न, तो यू नो कोई बार वो हमारे सामने देखते हैं and they laugh at us and they say, are you serious Ronak? Are we turning right from left side of the road? To sab logo ko bahut hi funny lagta hai and you know people make a joke, but when they understand the logic ki iske ko hook turn ko kyun aise lena hai, kyunki melbourne ka jo tram network hai which is the largest tram network in the world, तो ये जो हुक टर्न बनाया है वो इसीलिए डिजाइन ऐसा किया है कि ट्राम भी इजीली मूव हो सके, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़े एंड पीपल कैन इजीली एंड मेक द राइट सेफ टर्न।
2: क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और प्लानिंग एक अलग स्तर पे पहुंच रही है तो हुक टर्न का ये रूल शायद आउटडेटेड हो जाए?
3: आउटडेट में तो ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बोला कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेन नेटवर्क है और इससे एफिशिएंसी भी एज पर उनके जो डाटा से तो 11 टू 16 सेकंड्स का उनका एफिशिएंसी बढ़ा है बिकॉज ऑफ द हुक टर्न। कितने लोगों को पता नहीं है कि ये लोग जब स्टडी करते हैं तो उनको वो भी पता होता है कि ट्रेन कितने कम टाइम में कितने मैक्सिमम पैसेंजर को कैरी करते हैं, ड्राइवर्स को भी बहुत लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हुक टर्न, यस इट इज कंफ्यूजिंग, यस ड्राइवर्स को ऐसे लगता है कि ये इंटीमिडेटिंग है, बट व्हेन वी लुकिंग एट द डाटा पॉइंट ऑफ व्यू इट एक्चुअली वर्किंग वेल। तो आउटडेटेड जो आपने क्वेश्चन पूछा, आई डोंट थिंक सो अभी आउटडेटेड हो जाएगा। जब जब कोई भी रोड रूल्स या नेटवर्क चेंज होता है तो दे ऑलवेज लुक एट द प्रोडक्टिविटीज। अगर कोई ऐसा रूल्स नया आता है और ऐसी नई रोड कंडीशंस आती है तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू रिड्यूस अ कंफ्यूजन।
2: अच्छा, हुक टर्न करते वक्त सबसे बड़ी और खतरनाक गलती कौन सी होती है?
3: सबसे डेंजरस है कि बिकॉज दे गेट पैनिक। आप मिडल में खड़े रहते हो या ट्रैफिक लाइट पे हो तो दे टर्निंग टू क्विकली, टू अर्ली, क्योंकि उनको ऐसे फील होता है कि ये हो जाए इससे पहले मैं टर्न कर दूं, ये होता है मुझे लेफ्ट में नहीं जाना इसलिए मैं टर्न कर दूं। तो ये टर्निंग टू अर्ली, दैट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दे डू। कोई कोई बार वो ग्रीन लाइट पे खड़े रहते हैं तो उनको पैनिक फील होता है। नंबर टू कि जब वो लोग ग्रीन में एंटर होते हैं, वहां पे वेट करते हैं और जो अपोजिट साइड ऑफ द ट्रैफिक लाइट ग्रीन होता है तब आपको टर्न करना है, तो ये जो टाइम है ना, तो वो ड्राइवर बहुत ही पैनिक कोई बार हो जाता है, बिकॉज ट्रैम भी आती है कोई बार, पीपल माइट बी हॉन्किंग एज वेल, साइकिलिस्ट भी आता है, पेडेस्ट्रियंस भी आते हैं, तो वो टाइम पे आपको पूरा जो उसका सिस्टम है हुक टर्न कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए।
2: जी अच्छा, क्या आपके पास कोई यादगार, रोमांचक या फिर मज़ेदार एक्सपीरियंस है लोगों को हुक टर्न या ड्राइविंग लेसन से जुड़े हुए?
3: इसमें क्या है कि एवरी पर्सन व्हेन वी ट्राई टू टीच देम, वो लोग तो पहले उनका रिएक्शन ऐसे आता है कि शॉकिंग, क्योंकि ये मेलबर्न का यूनिक प्रोडक्ट है। अगर आप कोई ओवरसीज से आते हो या यहाँ से भी इंटरस्टेट से आते हो तो अभी भी जैसे कोई सिडनी से या एडिलेड से मेलबर्न में आता है और वो हुक टर्न बोलता है तो दे गेट कंफ्यूज। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि पीपल लाफ एट अस एंड दे से कि रौनक आर यू सीरियस, आई एम टर्निंग फ्रॉम हियर, ये गाड़ी मुझे ठोक नहीं देखी ना, ये ट्रेम अगर बीच में आती है तो मैं क्या करूंगा, कैन आई स्टे ऑन टॉप ऑफ द ट्रेम्स। तो ये जो फनी एक्सप्रेशन होता है ना, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, दैट इज काइंड ऑफ फॉर अस एज वेल इज इंटरेस्टिंग।
2: रौनक जी, क्या आपको लगता है कि मेलबर्न के अलावा दूसरे शहरों में भी हुक टर्न की जरूरत है या उसे अडॉप्ट करना चाहिए?
3: हुक्टन, सी व्हेन वी लुकिंग एट द डाटा एंड स्टैट्स, मेलबर्न के लिए ये काम करता है, एंड मेलबर्न में ये जो हुक्टन का सिस्टम है उससे एफिशिएंस भी बढ़ा है। तो अदर सिटीज में अगर उनके ट्रैम नेटवर्क अच्छा है, वेरी बिग नेटवर्क, उनको ट्रैफिक सेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कार का ट्रैफिक, ट्रेन का ट्रैफिक, साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियंस बहुत ज्यादा है, तो हुक्टन विल डेफिनेटली सपोर्ट दैट मूवमेंट्स। पर अगेन इट ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि ये यूनिक प्रोडक्ट्स है और जहां पे ट्रेम्स या लाइट रेल रहती है वहां पे ही वी कैन इम्प्लीमेंट दिस हुक्टन।
2: एक आखिरी सवाल रौनक जी, ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी अन्य देश में भी क्या ऐसे कोई यूनिक ड्राइविंग रूल हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
3: नबील जी, यू बी सरप्राइज, जैसे आपका आपने जो हुक्टन का बोला और मेलबर्न में हुक्टन इज अ यूनिक प्रोडक्ट, ऐसे यूरोप में और जापान में भी टू स्टेज टर्निंग का है, वेरी सिमिलर टू द हुक्टन हम यहाँ करते हैं, बट वहां पे खाली साइकिलिस्ट और जो स्कूटर्स होते हैं उनके लिए ये अलाउ है। तो ये हुक्टन ऐसा नहीं है कि खाली ऑस्ट्रेलिया में ही है, द कंसेप्ट इज अ बिट कॉमन इन अदर कंट्रीज एज वेल। जैसे यूएसए में है तो मिशिगन में एक ऐसा है कि नो डायरेक्ट राइट टर्न है, तो ड्राइवर को थोड़ा स्ट्रेट जाके यू टर्न करना पड़ता है और उसके बाद वो लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं। तो अगर आपने मेलबर्न में ड्राइव किया है, यू टर्न किया है, और अगर आप मिशिगन में जाते हो तो इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट वे। तो हाँ, तो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग सिटी में, डिपेंड ऑन द लोकल ट्रैफिक, वो लोग थोड़े कस्टमाइज करते हैं रूल्स।
2: तो ये थी हमारी बातचीत रोड सेफ्टी एक्सपर्ट रौनक शाह के साथ।
3: थैंक यू जी, ड्राइव सेफ।
2: अगर आप ये पॉडकास्ट एक बार फिर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर जा सकते हैं। SBS हिंदी पर ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने। इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।

तो दोस्तों, गाने का नाम तो आपको पता ही चल गया होगा. इस धुन का जो नाम है, जो गाना है, वो है देखा एक ख्वाब, सिलसिला फिल्म है. और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है. जल्दी से आपके नाम पढ़ देती हूँ. विनीत जी, निर्मित जी, तेज जी, यावर जी ने संदेश भेजा है और ईद मुबारक भी कह रहे हैं. आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक. रिचि जी, विजय, सैम जी, स्तुति वैद्य, पीयूष जी ने भी सही जवाब दिया है. साथ ही उन्होंने संदेश भेजा है कि उन्होंने मुझे खूब सारे संदेश भेजे हैं जो कि मैं पहले नहीं पढ़ पाई, लेकिन अब पढ़ देती हूँ. साथ ही संदीप कुमार जी का जो जवाब है बिल्कुल सही है. सुनील जी, राजेंद्र बोहरा जी, आलोक जी, हर्ष जी, अकबर मजारी

और डैनियल मजारी सिडनी से। उसके अलावा सुरेंद्र चावला जी का जवाब भी बिल्कुल सही है। और विक्रम बड़वाल जी की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा संदेश आया है जो कि पढ़ देती हूँ। लिखते हैं, नमस्कार भव्या जी, ओल्ड इज गोल्ड सही है, पर सोने को सुनार ही चमका सकता है। आपका सुंदर प्रस्तुतिकरण इन पुराने गानों में नई चमक भर देता है। आज तो मजा आ गया, साथ ही इनका तो जवाब जो है वो सही है ही। तो आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप में से कई लोगों ने मुझे आज कहा है कि पुराने गाने जो होते हैं वही बढ़िया होते हैं, नए गानों में ऐसी बात नहीं है। तो अपने अगले शो में मैं एक नए गाने की धुन लेकर आऊंगी और आपको अपनी प्लेलिस्ट से कुछ ऐसे गाने सुनाऊंगी जो हैं तो नए जमाने के लेकिन पुराने जमाने की फील देते हैं। मतलब उन्हें सुनते ही आपको ऐसा लगता है कि जो धुन है, जो बोल हैं, वो इतने सुंदर हैं कि लगता ही नहीं है कि आज के जमाने के वो गाने हैं। तो ये हम अगले हफ्ते करेंगे। फिलहाल आप सभी का मेरे साथ SBS हिंदी पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिर हमारी मुलाकात होगी जल्द। तब तक आप सुनते रहें SBS हिंदी।

पाकिस्तान के कई शहरों की सड़कों पर बाइक सवार लड़कियां अब मोटरसाइकिल चलाती नजर आती हैं। इस सिलसिले में भी आप एक सोशल रिपोर्ट सुन सकेंगे आगे चलकर। मगर आइए पहले रूहानी सफर का जिक्र करते हैं। बहुत से लोग इस वक्त हज पर गए हुए हैं और नए जज्बों की जोत जगा रहे हैं। इसी तरह नात गोई और सना खवानी भी रूहानी जज्बों का एक ऐसा इजहार है जो दिलों पर असर करता है। आइए इस वक्त आपको सुनवाते हैं जवाद अहमद की आवाज़ में नात रसूल मकबूल।

0: अभी आप सुन रहे थे जव्वाद अहमद की आवाज़ में एक सूफियाना और हम नात रसूल मकबूल से जुड़ा हुआ ये कलाम। और अब हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं और वक्फे से जब वापस आएंगे तो कुछ ज़िक्र होगा कि ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों के लिए अब हज करना मुश्किल तरीन क्यों होता चला जा रहा है। इसके अलावा बात होगी मुसलमान ईद उल अज़हा पर किस तरह ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कुर्बानी करते हैं और कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में हम जिक्र करेंगे पेट्रोल और ईंधन की इकसाम का, और पाकिस्तान से आपके लिए रिपोर्ट में बात होगी ख्वातीन जो बाइक चला रही हैं। ये सब कुछ अब से कुछ देर बाद।
1: ओ जीतू,

0: और हम फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जो कुक्ड फूड देती है लोगों को, कोविड में उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो वो जो अच्छा काम कोविड में शुरू हुआ था हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जिस भी फॉर्म में असल मकसद लोगों के खाने पीने का ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है इसमें, तो वो गोश्त की फॉर्म में हो या किसी कभी उनको दालें और कभी तेल वगैरह दे देते हैं, तो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि लोगों के खाने पीने की जो बेसिक नेसेसिटी है हमारी वो पूरी की जाए।
1: ठीक रिजवी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, सामिन इसी के साथ ही इस पॉडकास्ट से मुझे इजाजत दीजिए।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारे प्रोड्यूसर मोहम्मद रियाज की तैयार करदा रिपोर्ट के ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग किस तरीके से कुर्बानियां करते हैं और कुर्बानी के गोश्त का चैरिटी के जरिए तकसीम का निज़ाम भी ऑस्ट्रेलिया में काम करता है, वो किस तरह काम कर रहा है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि आपको सुनवाएंगे कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में से हज पर जाने वालों के लिए अखराज बढ़ते जा रहे हैं। आइए वो सेगमेंट अब आपको सुनवा देते हैं। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है जो उन मुसलमानों पर जिंदगी में एक बार फर्ज है जो माली और जिस्मानी तौर पर इस फरीजे की अदायगी की इस्तेआत रखते हों, लेकिन बहुत से ऑस्ट्रेलियन मुसलमानों के लिए ये सफर अब माली तौर पर मुश्किल होता जा रहा है।
3: Unfortunately, I would have loved to go on Hajj, which is a very important act of worship and a wish for every Muslim, but I will not be able to go this year and I hope that I will be able to go next year.
2: कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना है कि हज के अखराजात एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं।
4: In about 14,000, that's an affordable package now that is considered, but if one were to go to the high end package, it will be very expensive. Let us say to pay 20,000 or 30,000, for instance, or even more.
2: Australian travel agent मदर अल हलू इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ऑस्ट्रेलियन आजमीन हज के हमरा मौजूद हैं। उनका कहना है कि हज पर जाने वाले ऑस्ट्रेलियन मुसलमानों की तादाद में नुमाया कमी आई है।
5: This is big difference between 2021, for example, and 2025-2026. It's big different. Half of the numbers.
2: ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक मशरिक वस्ता में अदम इस्तेहकाम ने भी सफरी और इंतजामी अखराजात में इजाफा किया है, जबकि आलमी महंगाई और हज सीजन में बढ़ती हुई तलब भी इसकी बड़ी वजूहात हैं। माली दबाव के बावजूद कुछ ऑस्ट्रेलियन मुसलमान इस साल भी हज की सआदत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इनमें से कई अफराद ने अपनी उम्र भर के रूहानी ख्वाब को पूरा करने के लिए बरसों तक बचत की है।
5: A lot of people, they wanna come to Hajj. And they want to do it.
6: We registered and our names got selected for Hajj before the war. And then the war broke out here and it became a barrier between us and travelling for Hajj. By now we should have performed Hajj. Our name was selected from before the war. But the war broke out and there is nothing we can do.
7: It's the greatest project in life, the most important pilgrimage, and the crown of worship, and I am not at all concerned, especially as we're going to holy sites.
8: This year's Hajj comes as the region remains on edge following conflicts involving Iran, Israel, and the United States, with a fragile ceasefire raising concerns over wider regional stability. The Hajj unites Muslims of diverse races, ethnicities, languages, and economic classes from around the world. This leaves many with a feeling of unity, connection and humility.
3: The feeling a person has during Hajj is different. I've never felt this way before. It's a very different feeling because, as you say, it's a ritual, an obligation for those who are able to undertake it, but we all love to do it. And thank God, He made it easy for us to perform Hajj this year.
9: Today I got the chance to visit the Mount of Noor and the Cave of Hira, where our beloved Habib sallallahu alaihi wa sallam received the first revelation of Quran through Allah subhanahu wa ta'ala via Jibreel alaihi salam. This was one of the most memorable journey of my Hajj, apart from Umrah, Tawaf and Sa'i.
2: कई ऑस्ट्रेलियन मुसलमानों के लिए हज की दिली ख्वाहिश आज भी पहले की तरह मौजूद है, मगर फिलहाल ये ख्वाब उनकी दस्तरस से बाहर दिखाई देता है। अभी आप सुन रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन मुसलमानों के लिए हज दुश्वार होता जा रहा है क्योंकि अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रोग्राम में हम वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ और भी मालूमाती सेगमेंट्स लेकर आएंगे।

और पाकिस्तान भी आपको लिए चलेंगे, जहां कुछ ख़वातीन बाइक से चलाने वालों का जिक्र होगा। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल ईंधन की अकसाम के बारे में आपको मालूमाती सेगमेंट सुनवाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। अगर प्रोग्राम के बारे में आप कुछ तबसरा करना चाहें, बात करना चाहें या मैसेजेस भेजना चाहें तो आप हमें फेसबुक पर इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हम youtube.com/sbssouthasian/urdu पर मौजूद हैं और हम अपने लाइव शो के दौरान भी आपके मैसेजेस वसूल करते रहते हैं। और आप हमको अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल्स पर भी सुन सकते हैं। SBS ऑडियो हमारी मोबाइल ऐप है जो बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब है। इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और इस पर नोटिफिकेशन सेट कर लें, उर्दू प्रोग्राम को अपनी फेवरेट लैंग्वेज सेट कर लें, तो फिर आप हमारा कोई पॉडकास्ट मिस नहीं करेंगे। साथ साथ में हम facebook.com/sbsurdu और instagram.com/sbsurdu पर भी मौजूद हैं, मगर हमारा मेन पेज sbs.com.au/urdu आपके लिए सबसे बेहतरीन पेज है। लाइव स्ट्रीम और प्रोग्राम के मंतकब हिस्से के लिए आप इसी पेज पर जा सकते हैं sbs.com.au/urdu। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक नाते रसूल मकबूल, और ये हकीकत में तो कारी वही जफर कासमी ने सबसे पहले इसे 70 की दहाई में पढ़ा था और इसने बड़ी मकबूलियत भी हासिल की, और इसे बाद में हालिया दिनों में अली जफर ने दोबारा से पढ़ा है। आइए अली जफर की आवाज़ में आपको ये नाते रसूल मकबूल सुनवाते हैं।

0: कि हर किस्म का पेट्रोल हर गाड़ी के लिए मौजू नहीं होता। आइए जानते हैं माहिरीन इस बारे में क्या बताते हैं। ऑस्ट्रेलियन सर्विस स्टेशंस पर दस्तियाब ईंधन या पेट्रोल की अहम अकसाम में मुख्तलिफ ग्रेड के पेट्रोल इस्तेमाल होते हैं। इनमें डीजल और इनमें डीजल भी शामिल है। पेट्रोल की तीन बुनियादी अकसाम में ईथेन पेट्रोल, एथेनॉल मिला पेट्रोल जिसे कहते हैं, अनलीडेड पेट्रोल यानी बगैर शीशे वाला पेट्रोल, और 91 ऑक्टेन ईंधन पेट्रोल जिसे रेगुलर अनलीडेड पेट्रोल कहा जाता है। ये आमतौर पर सर्विस स्टेशन पर दस्तियाब होते हैं, जबकि प्रीमियम क्वालिटी में अनलीडेड 95 ऑक्टेन और 98 ऑक्टेन ईंधन भी दस्तियाब है। यह आदाद मुख्तलिफ किस्म की पेट्रोल पंपों पर हिसाब के मुख्तलिफ तरीकों की वजह से कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये बैन अक्वामी तौर पर हम आहंग है, ये कहना है जैक एमन का, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं।
1: So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium and high grade octane are traditionally labeled 87, 89 and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
0: रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब ऑफ विक्टोरिया के पॉलिसी के सरबराह जेम्स विलियम वजाहत करते हुए कहते हैं कि ऑक्टेन रेटिंग ईंधन की मजाहमत को जाहिर करती है।
2: So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
0: अगर ऑक्टेन का नंबर ज्यादा है यानी उसकी रेटिंग हाई है तो उसकी कीमत भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लो ऑक्टेन वाले पेट्रोल बेहतर इंजन कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि अगर आप हाई परफॉर्मेंस या स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं चला रहे तो 91 अनलीडेड उमूमन फी लीटर ज्यादा फासला तय करने के एतबार से सबसे कम खर्च इंतखाब होता है।
2: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course 91 should be cheaper.
0: दूसरी तरफ अगर आपकी गाड़ी हाई ऑक्टेन के लिए तैयार की गई है तो उसमें 91 इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं दिया जाता। आपकी गाड़ी के फ्यूल कैप के अंदर या मैनुअल में वो ऑक्टेन रेटिंग दर्ज होती है जिसकी मैन्युफैक्चरर सिफारिश करता है।
2: That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
0: गाड़ी के recommended petrol के बजाय कोई और petrol इस्तेमाल करना गाड़ी के engine के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और साथ ही ये भी याद रखिए कि कभी भी diesel गाड़ी में petrol और petrol गाड़ी में diesel नहीं डाला जा सकता। अगर आपकी गाड़ी diesel पर चलती है तो आपकी manufacturer कंपनी आपको बताएगी कि आया आपकी गाड़ी बायोडीजल के लिए मौजू है या नहीं। बायोडीजल एक काबिल तजदीद और तहलील होने वाला ईंधन है। अगर आपकी डीजल से चलने वाली गाड़ी बायो डीजल के लिए मुनासिब नहीं है तो उसमें बायोडीजल नहीं डालना चाहिए। और अब बात करें E10 पेट्रोल की। E10 पेट्रोल में एथेनॉल शामिल होता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा आम एथेनॉल पेट्रोल मिक्सचर पौधों से हासिल करदा ईंधन है जो E10 में शामिल होता है, और इसे 90% अनलीडेड पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। इसकी ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा होती है और पेट्रोल पंप पर यह निस्बतन सस्ता भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह आपकी गाड़ी के लिए मजमुई तौर पर ईंधन की बचत भी करे। प्रोफेसर एमन इसकी वजाहत करते हैं।
1: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating, so for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price and those two things equilibrate out.
0: ये जानने के लिए कि आपकी गाड़ी में E10 या इथेनॉल 10 वाला पेट्रोल पड़ सकता है या नहीं, अपनी गाड़ी के पेट्रोल लिट के कवर पर लगे हुए स्टिकर को देखें, या फिर अपनी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से राब्ता करें, या उनकी वेबसाइट के ऊपर अपनी गाड़ी के सही मॉडल नंबर की तफसीलात मालूम करके जानें कि आपकी गाड़ी में E10 इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन पिछले 20 साल से बिकने वाली तमाम गाड़ियां E10 के लिए मौजू हैं। एक आम उसूल ये है कि अगर गाड़ी گاڑی میں کاربوریٹر لگا ہوا ہے تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ E10 کے لیے موزوں نہیں ہوگی۔ آر اے سی وی موٹرسٹ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ بہترین قیمت کے لیے تو مختلف پیٹرول اسٹیشنز کا موازنہ کریں۔ بجٹ کا خیال رکھنے سے پہلے یہ ضرور جان لیجئے کہ آپ کی گاڑی کے لیے وہی پیٹرول سب سے سستا رہے گا جو آپ کی گاڑی بنانے والی کمپنی نے اس خاص گاڑی کے ماڈل کے لیے ریکمینڈ کیا ہے۔
3: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے۔ آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے۔
4: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں اور ہم اس وقت آپ کو آسٹریلیا ایکسپلین کی یہ قسط سنوا رہے تھے، لیکن اس کی بہت سی اور بھی قسطیں موجود ہیں، بڑے معلوماتی اس میں سیگمنٹس موجود ہیں۔ اور اگر آپ آسٹریلیا ایکسپلین یا خوش آمدید آسٹریلیا سننا چاہیں sbs.com.au/اردو پر جا سکتے ہیں۔ یہاں ایک یاد دہانی بھی آپ کو کروا دیں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین ایسٹرن وقت کے مطابق سہپہر 3 بجے پاپ دیسی پر نشر ہوتی ہیں۔ بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے۔ آئیے آپ کو اس وقت گیت و گلزار کی دنیا میں لے چلتے ہیں اور ایک گیت سنواتے ہیں جو کوک اسٹوڈیو میں بڑا مشہور ہوا تھا، اور اس میں آپ سن سکیں گے آواز عاطف اسلم کی، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے ساتھی گلوکار اس میں موجود ہیں۔ یہ فارسی اور اردو میں مکس گانا ہے، اور اس کے لیے کوک اسٹوڈیوز کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان کی کاپی رائٹس کی اجازت کے ساتھ ہم اسے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آئیے سنیے یہی گی۔

0: अभी आप एक मकबूल गीत सुन रहे थे और अब हम आपको एक वक्फे की तरफ लिए चल रहे हैं, और वक्फे से जब वापस आएंगे तो आपको हम सुनवाएंगे पाकिस्तान रिपोर्ट, और उसमें जिक्र रहेगा बाइक सवार ख्वातीन का। और इसके अलावा हम आपको ये भी याद दिला दें कि SBS उर्दू की नशरियात आप सिर्फ रेडियो पर ही नहीं बल्कि अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। जी हाँ, हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से मौजूद है, जिसे आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड और एप्पल डिवाइसेस के लिए। और इसकी तफसीलात जानने के लिए sbs.com.au/audio पर जाइए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ चलते चलते आपके लिए गीत और संगीत का एहतमाम भी मौजूद रहेगा।
1: ओजे तू, सी तू, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: सुनिए मुनफरिद कहानियाँ किसी भी मोबाइल डिवाइस से। मुफ्त विजिट कीजिए sbs.com.au/urdu या अभी डाउनलोड करें SBS ऑडियो ऐप।

0: इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम था। मेरी बड़े मुश्किल था कि मेरे भाई वगैरह बुरा मान जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें फेस करी और बहुत छुप कर घर वालों को ना बताकर सिर्फ पेरेंट्स के इल्म में लाकर मैंने बाइक सीखी।
1: वो कहती हैं जब हम इब्तिदा में अपनी बाइक्स रोड पर निकालती थी तो लोग हमें देखकर कहते थे कि ये कयामत के मनाजिर हैं, साथ ही तरह तरह के जुमले भी कसे जाते थे। तहम अब कोई मुश्किल दरपेश नहीं रही, रोजमर्रा के मामूलात की अंजाम दही में भी आसानी हो गई है।
0: मेरा एरिया जो है बहुत कंस्ट्रक्टेड एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत बुरी नजरों से हमें देखते हैं और चलाने में बाइक बहुत दिक्कत होती थी। बाज हजरात तो ऐसे भी कहते हुए शुरू में गुजरते थे और हम डर जाते थे कि कयामत आ गई है। फॉर एग्जाम्पल किसी जेंट्स को ऐसे अचानक से कह देना अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो दिल जो है वो उस वक्त बैठ जाता है, डर लगने लगता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, जैसे कि हम कुकिंग करती हैं घरों में, खाना बनाती हैं घरों में, हम और भी काम करती हैं डेली बेसिस पर, इसी तरीके से हम राइड करती हैं, तो यकीन जानिए हमारी जिंदगी में बहुत आसानी आ जाती है।
1: ईशा सलीम याद करते हुए कहती हैं कि पहली मरतबा बाइक चलाते हुए बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब कोई डर नहीं रहा, ना लोगों का और ना ही रश का। साथ ही रिक्शा और टैक्सी वालों से किराए पर बहस करने की जरूरत भी नहीं रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, डर तो बहुत लगता है जब हम फर्स्ट टाइम राइड करते हैं। तो मुझे याद है मैंने अपने घर से जो पहला सफर करा और मैं बहुत दिक्कत और मुश्किल के साथ अपने ग्राउंड में पहुंची। जब मैं वहां पहुंची हूँ तो मैं ठंडी थी बिल्कुल, पसीने से शराबोर थी और बिल्कुल साइड साइड चलाते हुए पहुंची। फिर वही बात है कि जब हम डेली बेसिस पर अपने काम करने लगते हैं तो फिर ये है कि आसानी हो जाती है हर चीज में, हर चीज को फेस करने की भी हिम्मत आ जाती है।
1: वो दीगर खवातीन को मशवरा देते हुए कहती है अगर खवातीन बाइक चलाना सीख जाए तो उन्हें किसी के इंतजार की जरूरत नहीं रहती, वो कहीं भी किसी भी वक्त आने जाने में खुद मुख्तार हो जाती है।
0: और यकीन यानी जिंदगी में बहुत सहूलत आ जाती है आपकी सोच से कहीं ज्यादा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी जिंदगी में सहूलतें बिल्कुल मयसर नहीं थी, बैठे रहना पड़ता था कि भाई आएंगे, बाबा आएंगे, कोई आएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। मतलब हमें बस कमिट होता है तो हम वेट कर रहे होते हैं, हम उस वेट वाली झंझट से निकल जाते हैं। और आसानी जो हमारी लाइफ में अगर आप कहेंगे तो हमारा काम अपने आसानी तरीके से कर लेते हैं, यकीन जाने बहुत आसानी आ जाती है जिंदगी में।
1: ईशा सलीम ने दीगर वालदैन को मशवरा देते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटियों को बाइक चलाने की इजाजत देनी चाहिए, बाइक राइडिंग करना कोई बुरी बात नहीं। ईशा सलीम के मुताबिक नौजवान खवातीन को बाइक चलाने की इजाजत देना उनका बुनियादी हक है जिससे उन्हें कोई महरूम नहीं कर सकता। SBS उर्दू के लिए रिपोर्ट पाकिस्तान से एहसान खान ने पेश की।
2: और हम आपके लिए पाकिस्तान से न सिर्फ सोशल रिपोर्ट्स बल्कि सियासी मद्दोजजर पर मबनी रिपोर्ट्स भी लेकर आते हैं, तो ये हर फोर्टनाइटली यानी 15 रोज में एक बार हम आपके लिए कहानियां लेकर आते हैं और तबसरे लेकर आते हैं। अगर आप पाकिस्तानी खबरों में दिलचस्पी लगते हैं तो आप हमारे करंट अफेयर के पेज पर जा सकते हैं, SBS उर्दू के वेब पेज पर जाइए और उसमें आपको बहुत से ऐसे पॉडकास्ट सीरीज और सेक्शन मिलेंगे अलग जिनमें आप पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें भी देख पाएंगे। और अपने देश की खबरें में का सेक्शन मौजूद है हमारे वेब पेज के ऊपर और हमारा वेब पेज बाइलिंगुअल है यानी उर्दू और अंग्रेजी दोनों में मौजूद है, तो अंग्रेजी में उन लोगों के लिए जो उर्दू पढ़ नहीं सकते मगर समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारा SBS स्पाइस चैनल भी मौजूद है, SBS साउथ एशियन चैनल भी मौजूद है, ये अंग्रेजी में चैनल हैं साउथ एशियन कम्युनिटीज के लिए, उनकी मालूमात बढ़ाने के लिए यहां ऑस्ट्रेलिया में आप हमारे पेजेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप instagram.com/SBS उर्दू पर जाइए, facebook.com/SBS उर्दू पर जाइए और SBS South Asian/उर्दू पर जाइए, हमारे YouTube चैनल है। अब यहीं पर मुझे इजाज़त दीजिए, जी हाँ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और अपने आज के मेज़बान रेहान अलवी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ, फिर मिलेंगे खुदा लाया। और आप सुनिए ये मारूफ कलाम जो इब्ने इंशा का है और इसे हमारे वक्त के मारूफ गजल खान ने गाया है, आपकी समातों की नज़र है और मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।